0: sounds so amazing. Prayer भी हो रहा है. और भाई इस वर्षों को कोई विवाह का पता ही नहीं होगा. आशा भी दिखता हूँ. एक छोटी समझाओ. हमारे प्रभु ने कहा था इस वर्षों को कोई विवाह है और बाद विवाह हो सा जिसको विवाह गए काम में हो सा विवाह करने में लाइक काम में नहीं काम में नहीं हो सा
1: बाल विवाह काम में हो रहा हो इसलिए आज ही बात है.

0: पैसे तो सामने में से तो वो टैग कर को दिया अब ले टैग के जस्ट बाय ले के टाइम कर रहा है पैसे टाइम को ले ने और टैग से टैग ने पाई ना तो वो ने सो अब ले पर से पास सो ये रन सो लोग जनता हम
1: लोग दिखे को ना इन दे भाई का भी अब कौन से पैसा पाई ने आई रहने को सर तो पाई हम लोग बंदा कर लिए हमने अपना अपने आवश्यक पढ़ने कपड़ा और किताब और सब इतना सारा हम पैक करने रखने को सर हम लोग खुला कमरा ला सेंट्रल हाउस लाए को सर हम सब मिले के यहाँ जाने को सर तो यहाँ पर ये समस्या हम तक यहाँ पर क्या दे रहा पड़े कि पेट के रोगी काम से आप तो बहुत सब हम लोग यहाँ सारे रोग बस्तु नहीं होता फिर पनी इस बारे बड़े
2: का विकास

कभी ज्यादा हो जाए विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास अनुरोध अपना पात्र सुरक्षित प्राप्त हो और पूरी संख्या लाने का तुरंत नजरी को सुरक्षा के लिए जानकारी दी हो आपकी अवस्था में कहा करीबी नेपाल प्रभावी 100 हुआ 1000 लिया।

0: का 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिसो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो गुरुबाबा एफएमद्वारा सबै प्रजालाई सन्देश।

0: 지구를 사랑해 다시 다시
1: 나는 멕시칸 벽돋고 어디냐는 록탄지 시장에서 कर्मचारी पढ़ाई और कमाई को रोक दिखाई मानसिक बेसिक उत्साह प्रसार करने डॉक्टर हूँ दीदी भी पढ़ते हैं तसर्थ यात्रा और काम का वाली कतई छात्र हो सकते हैं विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करना

0: नेपाल प्रहरी एक शून्य शून्य वा एघार तेह्र मानव बीच विकल बुद्ध कुटुम्ब एघार सतहत्तर तथा बाल हेल्प लाइन 10 9 8 मा कल गर्नुहोस्।
1: जनहितमा जारी सन्देश।

0: intentar una fisiología, también pacientes o miembros de un sumitario, que ya le han cheque, han marido, van a probar, han de chale. La familia, porque todos los días de un sumitario, que quizás no hay que han marido cheque, pues hay bien. Quedarse con la habilidad de los chicos de que quizás no pueden tocar con la bata, con la sequedad de costa de colgar de la banda, y no se tuviera si se ha de chile por el nivel de quizás tan costa bata, bata, bata, al fijarse volver como se va, se ha habido y gana el lugar. Bien,
1: razón que volver a la no prestar a la data por la data, y estamos muy devastados en su vida. सम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराइन उद्देश्यले सेवा सञ्चालनमा ध्यानतिर हो सेवाका सुरुवात सङ्ग्रह भूमि तथा प्रयोग सम्बन्धित विषयमा सेवा राख्नुपर्छ र आवश्यक जानकारी समन्वय तथा सहजीकरण उपलब्ध होइन नगरपालिका चलेका उद्घाटन कार्यक्रममा नगर प्रमुख थारू स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 तथा प्रचलित कानुनसे स्थानीय तहमा तेलक अधिकारको जिम्मेवारी अनुसार नगरपालिका नागरिक भुगन व्यवहारिक सेवा डेटिएन प्रतिबाट भारी स्थानीय सरकार नागरिक प्रत्यक्ष द्वारा सरकारलाई कसरी सेवा प्रदान सहज सरल हो नागरिक मैत्री बनाए नगरपालिका निरन्तर क्रियाशीलताले गर्नबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन एनसे स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरको उपयोग नीति तथा योजना तर्जुमा कार्यान्वयन व्यवस्थित बस्ती विकास तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भूमिका दिनुभयो भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित सेवा अन्तर्गत उपयोग सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम भूमिका वर्गीकरण भूमिका वर्गीकरण उपयोगिता सम्बन्धी व्यवस्थापन व्यवस्थित बस्ती विकास सार्वजनिक तथा सामुदायिक प्रयोजन सरकार संरक्षण अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन हो भूमि अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजीकरण लगायतका काम महत्वपूर्ण रूपमा उपयोग भूमि भएको आवश्यकताका आधारमा मेलमेरी उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न व्यवस्था गर्दा कार्यक्रममा नगर उप प्रमुख मन्त्रला कुमारी चौधरी प्रमुख प्रशासकीय दशरथ बुढा निर्मल राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी लगायत नगरपालिका भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनमा ल्याएरसँग राजनपुरका नागरिकका भूमि तथा उपयोग सम्बन्धी विषयमा स्थानीय स्तरमा सेवा आवश्यक जानकारी हो सहजीकरण प्राप्त सहज होइन अपेक्षा कहिलेबाट बर्दियाको गुडिया नगरपालिका सजुलिया कप्पाटुलमा दुकान प्रमुख सत्र परिवारहरू नगरपालिका खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दा व्यापक राज्य प्रमुख लगातार पानीका कारण घरभित्र पानी पेटल पार्छ सत्र परिवारहरूमा सुरक्षित ठाउँको रूपमा प्रमुख गुडिया नगरपालिकाका औद्योगिक ग्राम साथीहरू महापुरा औद्योगिक ग्राम व्यक्तिहरूबाट सहिसक राख नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादव पुरा नम्बर 8 पुराध्यक्ष धर्मेन्द्र पानी हो दीपक पोखर पर्सन मुकुन्द परियार दुकान क्षेत्रका अनुगमन कैका सुरक्षित र अधिकार र नगरपालिकाका दीपक पोखर पर्सन मुकुन्द अरियालका अनुसार प्रत्येक परिवारमा 10.3 किलो चाल 5 किलो आलु 1 किलो दाल 1 प्याकेट नान 1 प्याकेट मसाला वा आधा लिटर त्याल वितरण कार्यक्रम समेरबाट पुरलिया नगरपालिका एक क्षेत्र स्थापित 5 परिवारका अठवटा कुरा व्यवस्था गर्नको राज्य नगरपालिका थप व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका चलाइरहेको भारतीय केवा गाउँपालिका चार दानपुरमा जङ्गली हतियार पाक्रा लगलगर धानबारीमा क्षति पुगेरबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज समस्या होइन जङ्गली हतियार किसान क्षेत्रमा पैठक पाक्रा लगलगर धानबारी नष्ट गर्नको स्थानीय किसानका अनुसार पाचक समय केवाको बस्ती तथा क्षेत्रमा दैनिक सचिन जङ्गली हतियार प्रवेश गर्न लागेबाट हतियार धानबारीमा क्षति पुगाइ लागेका छ किसानका चिन्तित पार्दाट केवा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश बहादुर शाही जङ्गली हतियारसे वित्तीय लगायतका क्षति भएका सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी पहल गर्न पर्ला बताइरहेबाट यहाँ हतियार नियन्त्रणसँग किसानको सुरक्षा उपाधि नारी संरक्षणका लागि आवश्यक उपाय तत्काल अवलम्बन प्रमुख अविरल पानी वाणी पौखा का कारण पाँचपुरी नगर पालिका में करीब 8 से 12% धनबाली क्षतिपूरक अनुमान का जिला क्षेत्र में ठलक थाना थप क्षति बीमा में से कृषि का पचैला क्षति में से प्रभावित किसान द्वारा नगर पालिका द्वारा तथा व्यवस्थापन का कृषि योजना बनाई राखेगा। नगर पालिका का कृषि विकास संस्था प्रमुख लाल बहादुर खड्का उसे
2: नगर पालिका

0: केन्द्रीय संविधान 2083-84 में बोलती प्रदेश का आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री इंद्रजीत थारू, दक्ष जनशक्ति उत्पादन रोजगारी सृजना गुणस्तरीय उत्पादन और व्यापार विस्तार हमारा बजेट से प्रणा पत्र बजेट नियोजन से लक्षित परिणाम हासिल विषय महत्वपूर्ण प्रति सीमित स्रोत होना प्राथमिकता का क्षेत्र में केन्द्रित करना चुनौती योजना सामर्थ्य कार्यान्वयन प्रवृत्ति अनुशासन को सुशासन कायम कर कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत कार्यपत्र प्रदेश का बजेट प्रणाली में स्रोत का संकुचन टुकड़े आयोजना योजना छनौट का कमजोरी को कार्यान्वयन क्षमता प्रमुख चुनौती अभियान प्रदेश योजना आयोग का पूर्व सदस्य तथा अर्थशास्त्री डॉक्टर सुधन कुमार ओली दूसरा अध्यापति योजना में से प्राथमिकता दे करीब 70% कार्यक्रम तर्जुमा होकर कार्यान्वयन में दे जानकारी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पंथी सामाजिक विकास मंत्री रामजी प्रसाद किमरे कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री केशव कुमार थारू योजना आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिल्ली राज परियार शिक्षा का लाभ राष्ट्रीय अभियान नेपाल का लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कृष्ण मोलपे बजेट को प्रभावकारी विनियोजन कार्यान्वयन सुशासन वित्तीय संख्या का सुधार में जोर देने का कार्यक्रम प्रदेश लेखानी अंतर्गत नारायण प्रसाद पौड़ सहित प्रदेश सभा सदस्य योजना आयोग सरकारी निकाय को नागरिक समाज का प्रतिनिधि का सहभागिता होगा कार्यक्रम एसएसटीसी का अध्यक्ष विमोचन घिमिरे का अध्यक्षता में हिंस दानसिंह प्रकाश गुप्ता खबर पठाइट आप राष्ट्रीय समाचार का बारे बिंदु से
1: प्रतिनिधि सभा चाहिँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलवायु न्याय तथा घटेपछि त्यसरी द्विपक्षीय विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिका सभापति चैनदुलाल कुमार चार 14 गते निर्वाचन गराएका सभामुख प्रसाद उदयाल प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 का नियम 176 का उपनियम 1 बमोजिम व 14 गते दिनांक 2 बजे सभापति चैनदुलाल निर्वाचन लिएर जानकारी गराइदिएको जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा पर्वत असर तथा घटेपछि त्रिशुली गते किनारको बस्तीमा भारतीय नगर विपद जोखिम अध्ययन और समुद्र कला समिति गठन गरिएको समिति जलवायु जनित विपद न्यूनीकरणका लागि व्यक्तिगत आधार तयार गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन जिम्मेवारी पहिलेबाट
0: पाँचकोडीमा लागि पालीमा आधारित खेती प्रणाली सम्बन्धी फिल्ड स्टडी तालिम आजले सुरु भएका उपप्रतिनिधि सभा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलवायु न्याय तथा भूटेपछि त्रिशुली विपदका विषयमा अध्ययन गठित संसदीय विशेष समितिको सभापति चयनकला उहाँ 14 गते निर्वाचन गर्न विभाग नेपाली भाषाका हाम्रा सन्देश देखाइने बाटी तबसम्मका समाचार कक्षका सकु सक्रियका प्राथमिक सन्देश गौरी शंकर क्यामेरामा रमेशसँग सक्रिय बिन्दु ओमै कुमार देवी रेडियो प्रभाव एफएम सुन्दै रहे।

प्रारंभिक विवरण अनुसार तालीबंदी की कॉरिडोर प्रसारण लाइन ऑपरेट

0: questo
1: संसद जोखरा को गिरफ्तारी अधिकारी को विषय संसद भवन में प्रवेश पाया।